0: रस्ते में प्रिया सिंह जूम 2.0 ऑफ कोर्स इट जूम्ड इन किरू आई मीन व्हाई नॉट इट इज अ चैलेंज दैट हैज टू बी जूम्ड इन द पिक्चर्स अप ऑन व्हाट्सएप इट्स अ प्रोफाइल पिक्चर यू गेसिंग वेजिटेबल और फ्रूट दिस मॉर्निंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग इन प्लीज इफ यू सेंडिंग मी अ वॉइस नोट टाइप इट टू
1: हाय केपी इज दैट अ येलो पाइनएप्पल और स्क्वैश बीजी मी अबे
0: That sounds so yummy. Pineapple, wow. Squash, yeah, I don't like so much.
2: It's Millie's. Yeah, it's Millie's. Thank you.
0: All right. Well, do your guessing your answer reveal in just over 20.
3: I love listening. Yeah. I feel really good. You'll feel it. Bringing the sound of South Africa to you.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: सब कुछ मिला मगर न मिला दिल को इत्मीनान. ए जिंदगी, लाइफ, यू हैव गिवन मी एवरीथिंग बट यू हैवन गिवन मी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन माय हार्ट. यस, एंड दिस आर्टिस्ट इज कॉलिंग हिमसेल्फ सिंपली आसिफ. यस, आसिफ की आवाज थी. एंड आई सी आवर जाकिरा, यस शी लव्स हर म्यूजिक दिस लेडी. एंड देन दिस कैस एज वेल हु इज एंजॉयिंग द म्यूजिक टुगेदर विद टीना नाइक, आशा लोगन, एक्चुअली जुली कैसम शरीफ आउट देयर, सैफुद्दीन जाफर साहब ऑफ केप टाउन, शाहिद मियां भी इस प्रोग्राम को समाज फरमा रहे. एंड एज यू आर अवेयर, यू आर विद मी इबी महमूद ऑन लोटस एफएम एंड इट्स गुलदस्ता. And let's listen to Pankaj Udas sahab.
1: Hi, this is Pankaj Udas. Meri ye ghazal ka sher hai ki aap jinke kareeb hote hain wo bade khush naseeb hote hain. Dosto, aap sun rahe hain Guldasta with one and only E.B. Mehmood.

एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कधा। यस एंड दैट वाज ऑफ कोर्स पंकज उदास साहब, जो अपनी रंग भरी अंदाज में उस गजल को पेश कर रहे थे आपके गुलजारे तखयुलात को मजीद महकाने के लिए। इबी महमूद हाजिर है इस खूबसूरत शाम का खूबसूरत तोहफा गुलदस्ता लिए हुए। एंड थैंक यू सो मच इंद्रानी, वसंती एंड कानिगी ऑफ खाउटेंग, टुगेदर विद टीना नाइक ऑफ शेल क्रॉस एंड आवर सिस्टर तराना, तराना एज वेल इज आल्सो लिसनिंग थ्रू एंड शी लव्स हर गजल्स एज वेल। ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस सो मच। आइए अब गजलों के बेताज बादशाह गुलाम अली साहब को हम पेश करते हैं।

0: तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए. एंड नो इट वाज नॉट पंकज उदास, दैट वाज अली खान ट्राइंग टू इम्पर्सनेट एन एंड ऑफ कोर्स डू अ थिंग ऑफ आवर ट्रेजेडी किंग. इट इज अ ट्रेजेडी किंग्स गजल दैट इज बीइंग संग बाय अली खान साहब.
1: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 3 days only, save up to 50% on deals like Clover or Tropica Yogurt. 100 gram six pack, any two for just 30 Rand. Right Brand Baked Beans, 410 grams, 4 for 35 Rand. Protex Bath Soap, 175 grams, any two for a low 24 Rand. Domestos Thick Bleach, 750 mils for 26 Rand. And Baby Soft 2-ply Toilet Paper, 9 pack, 2 for only 99 Rand. Valid until this Sunday, 20 September. Big Red Weekend, only at ShopRite.
2: You are listening to Goldasta on Lotus FM.

तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। डोंट फॉरगेट टू जॉइन क्रिसिंग्या राधा राधे एट लीस्ट एट टॉक एट 7 इमीडिएटली आफ्टर द 7 PM न्यूज व्हेन दे विल ब्रिंग यू समथिंग एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एज यूजुअल एंड आई एम श्योर यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो दैट इज टॉक एट 7 बाय क्रिसिंग्या राधे इमीडिएटली आफ्टर द 7 PM न्यूज। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जॉइन मी ऑन संडे इवनिंग एट 9 PM फॉर कवाली आवर। आई एम गोइंग बी प्लेइंग आउट विद निकलो न बेनकाब जमाना बेकार है।

I've got my shame on the rap with my brother Lijo George. नखरे करे ये तेरे तंग क्लब में लगा दी तूने आग ये दूर से ना आप मुझे